0: आउ जों लपुंग रसाब मखना लागे आउ फारिगे जों अजारव सालकामानि पान्दाव जों हाबलायानो सालकामानि पान्दाव जों दिनै सालायानो जों याक ति सालाय माने किसा किसा ककरक बांलायखांके किसा किसा ककरक सालायखांके याक ति सालाय माने आ ककनो दैनो जों दिनै सालायानो आबोंखा जों बेलायखे याक ति सालाय माने आबो केरम नो यागो नामाखलायो आबोन बगा आबो बेलायखेनो जाया नरक बाहाय वानसुक आबो बसुक जरातै जाया बसुक जरातै आबोनि माजरा दं हायखेबा आबो बर' रगनि बखावा बसुक जरातै मारि कतर क्लाङै थां काकफ्लाया आबो नरक बाहाय बाहाय नरक वानसुक नरक बाहाय नुक फादि जों आबोनन दिनै सालायनो अजरावो कक दुख फाइसे दंखा नाय नायग्रानो साबो ओङै दंखा हेलो
1: हेलो
0: फुं गाहाम दाखु ओ बेलाय खेलाम सुगो दाखु अग्रान खुलुमुं याफार फुंखा चांग जरावो

0: सां बाहेगे सों कॉल बाय सों आज रीजन नो सों दिखलाई मानोय सों बाहेगे एबोनो सोलुशन खायमन एबोनो सों मारु तुक्लाई नै ता हाबो बायनो सों गाहाम हामिया हाय हामिया खनि खिबितर लाय मेयाबले
1: आ फोरोङै नो माटि सानाय फोरोङै नो सनामै माटि सानाय
0: आबो ता हामिया नो सुसाय माना लायनाय बनो नो बुजाव सनामै मातब लायनाय आबो हाय ता
1: आ बेलायखेन हामबाय गोरों मानि बागै
0: हामबाय
1: आव आबो नो जों जलि लाय मानि थामजि कालाय मानि थामजि दंलाय मानि आबो जों जाया नुगै दं हा हंखाय जलिनाय थिक न फियाबा जों बिनि जायाङै दंखे ब जायाख्लाय दं हांखे जों बनो थामजि दंगै बहुत तगै फोरोङै माया आबो उल्टासे रियेक्शन नांनाय आबोनि बागै जों फोरोंनानै हिंगांखे कक गोजांबाय कक गोजांबाय बखरक थान्दा ख्लाय कक बायसे गोजां कक बायसे नों बनो फोरोंगै माननाय आबोनि बागै बरकन फोरोंनानै बा बरकन दै दलनानै हिंगाय कक गोजांबायसे जेफोर बनायदि कक गोजां सानाय राव बोखावा जेसो बानो बिनि हामियाफा नोङै दंथों नों ब कक साखा हांखाय नों इसाला इ आव अबा हेखेरा कक यासागै मा सावो अ कक गोजां बखु गोजांखे कक सामानै न बेलाय न जुदा आबो बरकन खाकजां मारो तै बता मुसाइ टंका आबो खनामा बायबो बरकन बोखावो वान सगुं फायो हायखेबा रोंमं फायो नायन हेना हायन हाय कक दखो सावो दं सबब दं माने खनायमानलायलिया गोरोंमानलायलिया कक्रि नरक जाय दगै दं दि गोरोंनानि बागै हानि हाय कक दु फाय दं खानाय नाया नों हेल'
2: हेल' मेडाम
1: फुं काहाम ताखौ फुं काहाम ताखौ खानाय देमान काहामखे खराङानि खानाय मानो ना द सागरा दि बर'नि साहित्यं साबो साहित्यं
2: या महारानी नै राजकुमार
1: अ बलाके लामसग दाखौ सादि द
2: सासियो साइथानाय आन्दारा साइथानाय बनाव मेदान नांगा
1: छौका बो बलाके कक खाम कक जार जेनि बागै जतनि बागै
2: कक कक सांबाय बुझाव खानखे बो सरथाने बिसि फानो उलो फानो बो वान सुगै मानो ओ आनो आं दे साहाया खरिदा मानदे किसा थां दंगा महालले नाय के नंबनो जेसे फानो बजे खाइ दं फं बनो या रु तां रि खान के मानो बनो खुतुं बाय थाखां के बो तैनो उलो वान सु बुमाय या नाय बो आं थाइते बु बरो हाया गुब्ले इन बो वान सु
1: जे
2: सानाय बरक न न तै नब जल फिसिनाय हाय नमाय
1: आव बलाय के हामबाय ताखुक न न करेंग माने बागै जिनि यागो जरा आमसे करिखा हायुनि खरां खना लायनानै बखाखसिं मा थांलायसि नै आव जुलि लाय माने थामजि कालाय माने थामजि तुंलाय माने थामजि त जों सिनि गगो न साजागो थामजि त मुं साजागा जुग्या हनै नै आबोनि बागै थामजि सुला सुग्या न आबोनि बागै थामजि न साहित्य टनि न जों जेसा ककलाम जों जालनि कक्रक न सक्रबै जों गाहामनि सामुङ गाहामनि कक मातलांनाय आबो बेबाक न गोजां गोजांखे ख्लायखेसे गोजां गोजांखे ककलाम साखेसे आबो जों जालनि यागनि यगै माननाय फादिताबो खोनालायानो हायुंनि खरां

0: छत्रपति शिवाजी महाराज व महाराष्ट्र व राजा अंगै बिनि राज्य अभिषेक खालायजागमानि बन मुकुट थब्रगै सिंहासन आसुरो जागमानि दै आफुरुनि सिमिन बक्रा खालायनाय आरो बरकनि जे माराठा साम्राज्य न ब दिसामानि संसामानि कतर तै गुवार खालायनाय आमनुकारिब तिनि देहाय सालन हिरालाल सेन पुइला जबा कुसुम हेयर टनिक होने पुला एडभार्टाइज खालायना जेंजाकमानी आबनकारी तीन तिहाय साल पालाइजाक मारक ने विशिंग हंगांगे नेशनल डे ऑफ स्टूडेंट ने पालाइजाको तई यूएन रासिया लैंगुएज डे नहीं हायंग पालाइजाक दंग आबनकारी तीन तिहाय सालो हायु बेराम मंगनांग रंग आसायनाय रकनि बिसुंग दङ बलिउडनि एक्टर बंखा सुनील दत्त बिनि आसायमानि इंखा 1929 बिसुंग ब आसायमानि आबनकारिब तिनितिहाय सालो आसायनाय रकनि बिसुंग दङ बंखा मुंगनां प्लेबेक सिंगार नेहा कक्कर बिनिबदिनि आसायमानि साल आबनकारि दङ मस्ति वेंकटेशा यांगार बहंखा खरक्सा कानाडानि सैगोरों एकाडेमिक तै जनफिट एवार्ड इयासाकजाक बिनिदिनि आसायमानि साल आब्रकनकारिबो दङ विदीप्त चक्रवर्ती बंखा इंडियानी बांग्ला तके सनामनाय बानकनाय तई टेलीविजन नी एक्ट्रेस बब तंगमानी तीन तिहाय सालो 1973 विशुओ ब आसायमानी आबनकारीब दंग शुभांकर दे बंखा इंडियानी बैडमिंटन थांनानै गोरों बिनिदिनि आसायमानि साल आमनकारिब तिनि देहाय सालाव थैजानाय रकनि कर्णबो जों मैद' खालायलायानो तिनि देहाय सालन पाति थांजाक अपारेशन ब्लू स्टार अब पाति मानिहिके गोल्डेन टेम्पल अमृतसर थैजाना हिंके मिलिटेंट लीडर जर्नल सिंह बिंद्रवाले अबंखा कैसा ब्लूस्टार अपारेशन अंखा भारतनी नाइमथां बाहिनी बरक जेफ्रो अमृतसर गोल्डन टेम्पल दामदामी टाक्साल लीडर जर्नल बथैजामानि तै आरो गोबांमा सामुं सितारा दांनाय रक हायखेबा उग्रबादि रक आरो तंथायनाय तंनानि तंमानि आबुनो रोख्लायथानि रोख्लायनानि बागै अ अपारेशन संजा जाकमानि आबुंखा धर्मयुद्ध मोर्चा हानायनाय आजरावनो बर गोबां माथिमानि जों नुगौ आबनकारी आजराव प्राइम मिनिस्टार हेकबा मन्त्री बखरक तंमानि इन्दिरा गान्धी आपाति मुरक पातिमानि हिंके 1984 बेसिव आसुकजरा जों खोनालायगा तिनि देहाय सालो हायुंग पादै थांमानि कक्रक
1: आं फादि ताबो तांबिथ' हाबलायानो दिनैनि तांबिथिव मोसाम्बिर कायमानाथै थाइजाथानि कक सिलायानो कमलानो कसल मोसा

आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा, द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी असर्ट्स इंडियन इकोनॉमी रिमेन्स एक्सेप्शनली स्ट्रांग डिस्पाइट ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस। Reserve Bank of India eases regulatory norms for foreign portfolio investors in government securities to attract investment. More than 9.42 lakh farmers to join Khet Bachao Abhiyan for balanced fertilizer use and sustainable farming. India slams Pakistan for abusing its temporary membership of UN Security Council.

खापांग या खराय पांडनी बिशंते और पांडनो चेंगलाई नहीं चंग खापांग या खराय पांडा खनाओई चीनी पांडनी ते वो बिशंग हाबे नहीं के आंग नरक नो कोई नहीं खापांग या खराय पांडा वो नरक आंग बाई कोक दुक्ती करंगी ताई

आं नायसुमि दङ नरकनि कक्लब नरकआनो कक दुप्तै गोरों हरै नरकनि कक्लब नरक सायखानारि खांखाय आं बनरकनोतै ब सायखानारि माननो हाहिनि खाजोंङै दंमोन फिया बताक ब कक कक दुप्तै गोरों हरनाय ग्रिखौ आं आम्बागै नरकनो कयो दाति दाति नरक आं बाय कक दुप्तै गोरोंनानि बागै जायदि आं नरकनि कक्लब खोनाना बागै बेरायखेनो खादोंनि दङ दाय खाचङ नरकनि खोनाथक खोनाथक कक्लब रकन खोनानानै सेब गाहाम मानानो होनो फैयाबा कक दुख दाबुक फानो केबो गोरोङै माइया दाङै दंखां सैमिया कक दुख दै केबो गोरों हरियाखौ दाबुक सेकजरा आं अमन बागै कक दुख याचगि माइया दाय नरकनि कक्लब ब खोनानानै अ सेब माइयाङै दंखा दाखौतै बेखौ सौ नरकनो आं हायन' हाय कय' नरक गोरोंदि आं बाय

नों बनोंगे नायफायदि लामसगुनोनो नग्राय कतर आनि कामिबो नायफायदि वा बाय बालजाक हामिया कलाइजाक नोंबो बालि नायफायदि लामसगुनोनो नग्राय कतर आनि कामिबो नायफायदि लामा गानावो बसामा बावो बमा नोंबो खिचबाम रमफायदि लामसगुनोनो नग्राय कतर आनि कामिबो नायफायदि कारेन्ट सिकरै मां मनाकमा नों बतंगुई नायफायदि लामसगुनोनो नग्राय कतर आनि कामिबो नायफायदि।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार मैडम।
0: अच्छा पंखा
1: जी, मैं बहुत दूर से बोल रहा हूँ
0: जी।
1: हाँ, मैं शेख जफर हसन कुआज रोहतास बिहार।
0: हाँ बोलिए
1: जी मैडम। हाँ
0: क्या बोलना चाहते हैं आप?
1: तो बोलना ही चाहते हैं, फिल्म का नाम बताएंगे, एक शेर सुनाएंगे, उस गाना दो लाइन गा देंगे, दोस्तों का नाम ले लेंगे।
0: एक्चुअली याद शेर सुनाना है तो आप सुना सकते हैं, ये तो ककब्रुक का प्रोग्राम है, ये ककब्रुक से होता है, लेकिन आप सुनाना चाहते हैं तो आपको एक मौका देते हैं, प्लीज़ आप एक शेर सुनाइए और गाने का टाइम थोड़ा देर में होगा तब आप फिर फ़ोन कीजिएगा। अब शेर सुनाइए प्लीज़।
1: अच्छा टाइम बता दीजिए।
0: हाँ थोड़ा और 15 मिनट के बाद फ़ोन कीजिएगा। अब शेर हाँ शेर सुनाना है तो सुनाइए।
1: जी सुन लीजिए, गम को हंस के गले लगा लेते।
0: हाँ
1: दर्द, गम को हंस के गले लगा लेते, दर्द सहकर भी हम मुस्कुरा लेते, दिल की ये आरजू रही दिल में, काश के तुम वफा निभा लेते। मैडम
0: वाह बहुत खूब बहुत खूब बहुत शुक्रिया शुक्रिया।
1: हर एक लफ्ज में पिन्हा है प्यार की खुशबू, वक्त वक्त में समाई है यार की खुशबू, मेरे खुदा इसे अपनी अमान में रखना, जो देख के भूल गया इंतजार की खुशबू।
0: वाह वाह बहुत खूब, क्या बात, शुक्रिया फोन किया। तो आप गाना सुनने चाहते तो थोड़े देर बाद फोन कीजिए, बहुत शुक्रिया।
1: मैडम उस वक्त से सुना सकता हूँ ना?
0: अभी तो थोड़ा टाइम कम हो गया, अगली बार
1: नहीं तो पहली बार कॉल हमने लगाया है तो
0: हाँ
1: 1:30 बजे कॉल लगाएंगे।
0: हाँ थोड़ी देर बाद मैं फोन कॉल लगाएगा तब आप गाना सुन सकते।
1: हाँ दूसरा शेर सुना देंगे, एक आपको दुख सुना दिया, बहुत सारे शेर हमारे पास है।
0: अच्छा खुद का लिखा हुआ है?
1: नहीं ना, शायरों का नोट किया। अच्छा, 1000 शेर हमारे पास, 1000।
0: अच्छा भाई साहब ये तो ककब्रुक का है इसलिए जो सुनने वाले तो ककब्रुक वाले हैं, इसलिए तो ज्यादा और नहीं दे सकते। शुक्रिया जी,
1: बड़ा शुक्रिया, अच्छा जी। बोल रहे हैं मैडम, बहुत आप अच्छा बोल रही
0: हैं। शुक्रिया
1: बहुत, जी
0: फोन करने के लिए बहुत शुक्रिया आपको। हाँ
1: जी, नाम अपना बताते जाइए।
0: मेरे नाम शर्मिला देव वर्मा है।
1: शुक्रिया। शर्मिला,
0: हाँ हाँ।
1: अच्छा, देखिए आप उसमें अवसर से आप रहते हैं कि मैडम रहती हैं, तब वो देखने वाली बात होगी
0: जी।
1: जब कॉल लगेगा या लग जाएगा तो उसमें हो सकता है कि आपकी ड्यूटी रहती है या अनाउंसर का रहता है या मैडम रहती है, ये बात मैंने बोला।
0: हाँ
1: ये चीज बोला तो सेटिंग बदलती रहती है ना।
0: हाँ हाँ फिर तो आप कीजिए, कोई तो होगा ना, कीजिए आप फोन कीजिए। ओके रखती हूँ। हाँ
1: शुक्रिया। हम जी जी हम करेंगे 20 मिनट के बाद।
0: ओके ओके हम रहेंगे, कीजिए।
1: अच्छा तो फिर सुना देंगे आपको।
0: ठीक है ठीक है ठीक है
1: ठीक
0: है जी मैडम। हाँ अंते विषय करेंगी नहीं ना ते बो कोक दुक फाइट होंगे। हेलो
2: हेलो
0: मैडम दीपर कहाँ लामसोगो खपंगिया करे पांडा वो
2: मैं तो साउंड लोग को थोड़ी नहीं मिली क्या। माँ जिम्मे हो गई थी नहीं मैं हाथ जाए तो कॉल हाथ जाए।
0: ओ ते किसे कॉल करते हो किस हाँगे दी?
2: हाँ वीवो खाई वीवो खाई वीवो खाई तो आप बोलते खाई
0: नहीं हाँ बियांग उतान दो आ कौन छाती बियांग लिंका।

0: ถ้าสงสารมันใช่ก็สงสารจะเสียแต่ถ้าอยากทักกูดีมาเข้าว่ามุสังมันใช่ก็มึงเลี้ยงไปยังไงกูดีก็มุสังจะเสียถ้าสนุกก็
1: ไม่เล็กขึ้นขนาดเท่าทุกห้ามไปเล็กแ
0: ค่ถ้าเกิดแต่ยาบอกที่จะไปวันชุกมึงใครก็ต้องเสียมาเราก็ว่าต้องไปว่าให้ตอนที่สั่งจะขนาดนั้นก็ต้องได้ย
1: ี่เที่ยสั่งจ้ะmeleke hambai kerumane bagi te asukna to
0: to abono te kisya ko kisya aro khana musan hamadam topic ni bai rahai ta mira ni je hayung tong persal kala le mani ke aro hayung tong persal sang ne sang yakre batal ni ni do mira pala le cha ka che ja ja wo ka che thaiyo ten ge ta ko thum bai mala ya khano na jina sakala le ya ba hai ta pala le cha ये जाने जाने आम ताईया जो मानसा तुमको फंग वक फंग का ले ये ना फंग वक रोज़ ही
1: आ
0: तो तुम ये कब आ जागा तो का ले क्या तुम जैसे नहीं बदल बदल नहीं बिचिं के आं कई यंग कई जब मान दे आम ताईया जितना आयं आगर जला के फिर आयं बिचरम गांव
1: बिचिं
0: ना आयं लोगों कब आ ना का ले क्या तुम बदल नहीं बिचिं के
1: इंग्लिश
0: बसकानी साला है क्या बसकानी बिशी लोग संते वो नाचो के काम का ही और सालों पाला लेने में मैं खत्म होने मत होता क्योंकि अंकल किशोर और जो कोक तुम्हारे को नामनी मनी वो नहीं नहीं मैंने आज नहीं साल नहीं चाहे आज नहीं बिशी नहीं चला तारे बिशी वो तो इसे बरोक साथ खारे पाले मैंने
1: कोक तांग कोक लो ब्रोग नरक आनो खनारमान बाके आंग नरक म बेले के हामबाया फरोते या खरे बदल रग न वते पु हामबाया फरो ब्रोग या खरे बदल न रगिबो कबांग मा कोक लो ब्रोग छिलै तंगो तै अबाय खलाइ न ओ जे हायुंग तंग खर साल पाले लै मनि अबो तो बेलाय के बोलाय जक नाय ते बेले के काहाम काशा या प्रिहने आंग नरक न मा बोलायो नरक नि ओ वान सुख मुंग न अबाय खे न जिनि हदानो जों बुसकांगत लांगनानि बागि काहाम करन तन्नानि कहाँ वन सुख मुंग नती जिन याप्री नजों सेनानी नांगो नरकनी ओ याप्री सेमानो आं खाबाय हामबाय याफारो दाय नरक न जतन न आनी हामजाकमा पाइपलाया दाय बरम याफारो हामबाय जतन नरक गोरों मानबागे हायनो बिसकांनि पान्दा ओंखाजों रिचाप मुंगी नरक ने हमजाक मा चीनी खातों मा पांडव नरक आंग बाय हाय नहाय कोक दुक्ति करेंगे मानो ताई नरक ने खाना तो रिचाप मुंग नो खाना ननी बागे नरक आनो शाहरी मानो हम बाय

0: kokduk hai no krungi nei phirana ang ha norok no hai no hai ma sao norok hindi tokene de sapung simia kok borok bo khana na hangang ke koi hore mano. Hello.
1: हम्म मैं असम से बोल रहा हूँ, सुमन मोहरी।
0: हाँ हाँ बोलिए।
1: ये मुझे गाना सुनना है।
0: हम्म
1: सजन फिल्म का गाना है, तू शायर है मैं तेरी शायरी।
0: तू शायर हाँ सजन ठीक है, तू शायर। हाँ हाँ हाँ थैंक यू kai tapuk resap mungkhana ruano abunishikango khorokse koi hormani tere isi adape sanam mujhe pe pyar aaya diwana toke nita chapmu

0: अच्छा मखना रजा खा तो शायर है मैं तेरे शायरी तो कि निबुमुंग खा साजन रचापना अलका यकनिक हाय नो हाय कॉक तुक ती करेंगे नया नो सबतांग हेलो
1: हेलो
0: ही सबुंग खा
1: कहाँ मैडम
0: ही पुंग का दीपर कहाँ
1: जंपु जलन तेरे शायरी सुना
0: विश्वराय जंपु जलनी दो
1: सबुंग खाना नहीं
0: Do Bobo?
1: Master G.
0: Do, chop no?
1: I think go to Tahonai, Malabanga, Nishamanitanga, area, Shochindra. The Bomasa, say, Tayang Bulagati, Evadolani, Taku, Idus, the Taito Tokonai,

0: हनुसा मुखना रिचख मास्टर जी तौकिनी गालोपे ये कैसा निशान अपन रिचख किशोर कुमार ताई एस जानकी है नाय कौतु शपथ नाई नैग्राना
1: हेलो
0: हेलो
1: जीव कहाँ भाई
0: की पर कहाँ मैं लेके लाम सको तीन ने ओ पांडा वो छागरा दी
1: आं कोई वाले तो नहीं पीजू सारी दो भाई
0: पीजू दो हैं
1: रुसा मुंह कैसे खोलना है आं सिंधी तो किनी एक दूजी की लीजिए नी
2: हाँ बनी पाई हम बना पीटी बना के हर हर आते
0: दो दो दो
2: आगे आते हैं
1: গোলাঘাটিনি দাদু নিতাই গিরিদেশ তাই
0: চাবুক খালাই রেচাব মূ কক বরক অবহে খাতং ইয়াদে নংলে আনো ও রেচাব মূ রেচাবনে রকম খা বিপাশারিয়াং তাই সমীর দেব বর্মা

रचा मुखना रचा खा खातांग यदि नंगले आनो और रचा अपनो कोई खा पीजूश ताई रचा अपनो नि ओगो खोरंग रनाई रोकने के विपाशरी अंग ताई शोमिर दे बोलमा तबु नाकर खड़ी तबु नियो रचा अपनो कोई नहीं से पीजूश वारिंग टू खुआनी हम बने तुम बने बो बिने और चपुनो डेडिकेट बोखलाइका गाय तबुक बिने और चपुनो खनारी वाना

0: असु जरा
1: जयंत जमातियाते मानसिनी खरांग रचापुं खनार जाखा खना थथो ब रचापुं बेलायखेन बरक रग ब चाजाखा रचापुं न बर रगनि जत जराय अक्रानी खाउन थाय मानजाक अ रचापुं ताबते थांसा अब हाइखेन खना थथो ते कचाम रचापुं अब हंके विश्वनाथ देवर्मानी खरांग खनार जाबो

अजीब बात यह है, मैंने अपने छोटे भाई को कभी देखा ही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं वो दिखता कैसा है, लेकिन एक बात का यकीन है, उसकी आंखें बिल्कुल मेरे जैसी हो। एक्चुअली मुझे लगता है वो बिल्कुल मेरे जैसा होगा, शांत, सुशील, शरीर, डिसिप्लिन। पर मेरा दिल कहता है मैं उसे देखते ही पहचान लूं, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण।

मैया है छोटी छोटी बातों में, नन्हे मुन्ने तारे जैसे लंबी रातों में, बड़ी बड़ी खुशियां है छोटी छोटी।

0: होगा
1: जवाब। अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप टूट जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदु बिंदु।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या

0: पवन करे शोर,
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।
1: पवन करे शोर।
0: हाँ,

0: बेखरेब कतर हामख्रायताय क्रिजा रकनि हामख्रायतां बुतांनो सेकांबाया मानथायरै हा कतर बुसकांगै दंगो कासमुं नायमथां मन्त्री आसना सिंसेखा जे जराव हा कतर कायसा कायसा रां थंथिति गुरैयक लाय तंगो फिया भारत अजारा नहागनि मामलाय कदखे रां थं हामसानाय अंगै तंगो बसाका मन्त्री बखरक नरेन्द्र मोदीनि अजामा बाय भारत रां थं हामसामान थिति तनेवै मानखा बाय थांपुइतु थांगै मानमा हामसामा थाग्या तंमाताय आलायदा गोरों बाय गोरोंजाक तंखा ओ हामख्राय यो खरक सारा ब्रैसि रोजाक हा कतरनि तांनाय रकनि बिसकांग कताल लामा फियखा हुकबाटै हुकबार खलायनाय हामख्राय ककसं लाइनक साखा ताक्लाय बिसिनि जुन तालनि ताबुक जरा हा कतर खरक चुकु रासाय ब्रैसिनि सायनि गोबां हुकबार खलायनाय रक खेत बाचाव अभिजान गोरोंखा आब बाय काहाम फास सामुंगा फनांमा अचेतन न बेबक भारतनि लुकु सभाव सलायजाखा केन्द्रनि हुकबाटै हुकबार खलायनाय हामख्राय नायखुंनि असामुं बुतांनि नाहरमु ओंखा खथाजाक फास सामुं फनां नाव खा बाचारना हानि बला खातिवै नारोखना ताय काहामको हुकबानि रायदा फुवारना नायखुंनि बोखाक्ति साजाखा अभिजाननि बिसिन ताबुकसाक जराकाय चिसनि साइसा राननि गोबां हजाकमुं सामुं बुतां संसाजाखा लाय थानाय बिसिसि नैरमै भारतनि हुकबार हुकबार खलायनाय रकनि दाराग बांदा थानि मौसमा बांसामा नुकजाखा हुकबार खलायनाय रकन सुबानानि नाहारमुं ताबुक हामख्रायनि बिसिंग तंलिया आब थायरिमा बांमा आजिवै मानमा नायमोथां हाथियो तिलांमानमा थंताय मथानि बिसिंतै जे नांमातै फान गोनां खलायनानि फायसिं थांगै दंगो भारतनि हुकबार कताल कताल फान रोखा प्रधान मन्त्री फसल बीमा योजना अजोजना हुकबार खलायनाय रकनि बिसा गोनांगै वानायावै हुकबार खलायनानि बोखा बासारो आरोब मन्त्री बख्रक खाकसालनि वानसुगै ककसाबै मानमा हुकबार खलायनाय रकनि लांमानि कताल लामा सिनामखा अबनतै ककथंबोसाब गायसा
1: भारतनि हुकबारनि बाबायो तैब नायमोथां रोजाक हामग्राय गोनां खलायनाबो केन्द्र हापां गोबां नांमानि याप्रि नाहारका आबुनि बिसिंग तंग प्रधानमन्त्री फसल बीमा योजना हुकबार खलायनाय रकनि बागै कत सामुं तांगै तंग अतांगतांनि सेबबाय हुकबार खलायना जेंफ्रुनि सिमि हुकबारनि बुथाय तिसामानि यागुल देरामुंग खलायमानि अबेबागन बीमानि बिसिंग तुबुजाखा नै सायचिदक चिसनि बिसिनि सिमि खरक चुकुचिनै रोजाकनि गोबां हुकबार खलायनाय रक कयमुं बीमा याकाकजाक ओंखातै खरक नै ब्रै रोजाक हुकबार खलायनाय रक देरामुं सुपुं रोजाकमानि सेब मानखा तै बाबायसाबोखागो हुकबार खलायनाय रकन सय मरक मुं मानमुं रोनावो हापांकाय नैजिनै बोथायनि बागैन थायरिमुंग राव बाजिनि गोबां नांमानि एमएसपि चंगै रोखा थांनाय बिसि किजावन एमएसपि रुमानि मारि खुरजाजाक थतक बांखा फसल बीमा तै रांमारि बकमुं बांग्रोमावो अचेतन हुकबार खलायनाय रकनि आजिमुं बांग्रोखा तै हुकबारनि बाबायो नांमानि बारजा यासागै दंगो ककतमा खतलनि सिमि
0: रेल मन्त्री अश्विनी बैष्णव तिनी कलकाता शाखा रेल ककचं लाइनक सिलिगुरी निसिमी दिल्ली जोरा बुलेट ट्रेन लाइसुरुना ककचापखा अबनि बागै नांमानि सामुं दाक्ति न चेंग्रे जागोन बसाखा सिलिगुरी निसिमी दामदकनि बिसिंग न पाटना वाराणसी कानपुर गै दिल्ली अ बुलेट ट्रेन सगैयाना आकाशवाणी आगरतला केन्द्रनि अककमा आवाय खलाय जागै तंगो आकाशवाणी कक्तमा अपडेट मान्नानि बागै लग इन खालायदि www.newsonair.com न्यूज अन एआईआर एप ताय टुइटार बाय फेसबुक प्लेटफर्म एआईआर न्यूज एलआरस युट्युब नायदि न्यूज अन एआईआर अफिसियल अबनकारै बा आकाशवाणी आगरतला केन्द्रनि कक्तमा अपडेट मान्नानि हिंखे टुइटार एबा एक्स हेन्डेल आकाशवाणी न्यूज आगरतला फेसबुक एआईआर न्यूज आगरतला ताय युट्युब आकाशवाणी न्यूज आगरतला नायना नांगाना मन्त्रीकरा प्रफेसर डाक्टर मानिक साहा तिनी हदानि ककतमा लामो साखा बसंबेरम हास्तेनि पञ्चायत कायथाम सकात मानमा आबो हास्तेनि बागै वानसुगुइ पान्या सामुं चारि मानमाताय बेलाय बलायमुं बरम मानमा ब अ सामुं चारि मानमा बाइक रिंजाक जतन हामबाइया फारखा मन्त्री बक अक्रा साखा कायसा त्रिपुरा काहामखुक त्रिपुरा खामुंग असकात बेलाय कतर कायसा यां तिनी पांगन कतर ककतमा थुमनाय रकनि ककमालाय मुंग पंचायत मन्त्री किशोर बर्मन साखा हा कतरनि कामि आमचायनि नायकल मुं पिसार मुं ताय मानजाकमा बिसिंतै हामख्रायो त्रिपुरा असकात मानमानि बिसिंतै काहाम खलायमानि फुनुखा असकातनि बिसिंग नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार सिपाहीजला जिल्ला परिषद पुइला थाय मानखा उनकुटी हांखरनि कांचनबारी कामि पंचायतनि हेल्दी पंचायत बेदेक पुइला थाय मानखा सालथां त्रिपुरा हांखरनि बैकुंठपुर कामि पंचायत उइमेन फ्रेंडली पंचायत बेदेक फिल्ड थामनि थाय मानखा सकाट

0: वाले।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन से बिजली बिल से मुक्ति और बिजली की बचत के लिए पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया जा रहा है। आप भी बेहद सरल प्रक्रिया द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और 300 यूनिट मुफ्त बिजली हर महीने पाएं। सौर की शक्ति, बिजली बिल से मुक्ति। अधिक जानकारी के लिए पीएम सूर्य घर.gov.in पर संपर्क करें। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश की आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किए। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा, दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री और परिषद ने वैश्विक उथल पुथल के दौर में भारत की आर्थिक वृद्धि को और बढ़ावा देने के लिए कई विचारों और उपायों पर चर्चा की। जीवन यापन और व्यापार को सुगम बनाने के लिए विभिन्न सुधारों पर भी विचार विमर्श किया गया। सदस्यों ने भारत और विश्व पर पश्चिम एशिया संघर्ष से पड़ने वाले प्रभाव का भी आकलन प्रस्तुत किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं से संबंधित व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया। सभी सदस्यों ने सुधार यात्रा को और गति देने तथा जीवन यापन और व्यापार में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए अपने विचार साझा किए। आर्थिक सलाहकार परिषद एक स्वतंत्र निकाय है जो भारत सरकार विशेष रूप से प्रधानमंत्री को आर्थिक और संबंधित मुद्दों पर सलाह देती है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि युवा देश की सबसे बड़ी शक्ति है और वर्ष 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करने में अग्रणी भूमिका निभाएंगे। नई दिल्ली में विकसित भारत के लिए युवा माई भारत यूथ कन्वेंशन में श्री मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र निर्माण में युवाओं की आकांक्षाओं, विचारों और स्वैच्छिक योगदान की भावनाओं को साझा करने के लिए देश को ये मंच प्रदान किया है।
1: देश का 65 पॉपुलेशन बिलो 35 है, यानी कि देश युवा देश है। ये देश की युवा की शक्ति को विकसित भारत के राह पर ले जाने के लिए संयोजने का काम नरेंद्र मोदी जी ने करा है।
0: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और नेपाल लंबी और खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं और दोनों देश संकट के समय

0: हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल के साथ बैठक के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध जीवंत, जन संबंध, सीमा पार संपर्क तथा साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराओं की मजबूत नींव पर बना है।
1: सुरक्षा बनाए रखने के लिए मिलकर काम करना होगा। दोनों देश आवश्यकता के समय हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पश्चिम एशिया और मध्य पूर्व में जारी संकट के बावजूद हमने नेपाल को ईंधन की सप्लाई बिना किसी रुकावट के जारी रखी है। दोनों पक्षों की ओर से इस रिश्ते को जो महत्व दिया जाता है वह हाल ही में सामने आया है।
0: श्री खनाल ने कहा कि भारत नेपाल का सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है और नेपाल ने भारत को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रतिबंधों की धमकी देकर भारत की संप्रभुता को कमजोर करने का कोई भी प्रयास उल्टा पड़ेगा। सेंट पीटर्सबर्ग में श्री पुतिन ने स्वतंत्र निर्णय लेने और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति भारत की प्रतिबद्धता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने बाहरी दबाव की परवाह किए बिना हमेशा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए हैं। श्री पुतिन ने कहा कि रूस और भारत के संबंध आपसी विश्वास पर आधारित हैं और व्यापार से कहीं आगे तक हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देश ब्रह्मोस, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम सहित संयुक्त अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: नेशनल स्कीम के टेली लोन नए बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लोन के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने कानूनी माप प्रणाली के अंतर्गत खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग लागू की है। इससे बाजार में अधिक पारदर्शिता और एक रूपता आएगी। उपभोक्ता कार्य विभाग ने खाद्य तेलों और घी की शुद्ध मात्रा तथा मानक पैक आकार निर्धारित करने संबंधी मानक संचालन प्रक्रिया में संशोधन किया है। स्वीकृत पैक आकार 200 ग्राम 500 ग्राम 1 से 5 किलो 15 और 20 किलो हैं। इस पहल का उद्देश्य बाजार में विभिन्न पैकेज आकारों की बढ़ती संख्या कम करना है। इससे उपभोक्ताओं के लिए कीमतों की तुलना और सोच समझकर खरीदारी करना आसान हो जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से लंबित रेलवे परियोजनाओं का समाधान होने से राज्य में रेलवे अवसंरचना विकास के एक नए युग की शुरुआत होगी। कोलकाता के नबन्ना में श्री वैष्णव ने बताया कि वर्ष 2026-27 के रेल बजट में पश्चिम बंगाल के लिए 14,205 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। रेल मंत्री ने अगले 5 वर्षों में कोलकाता मेट्रो के लिए 60 नई रेलगाड़ियों को शुरू करने की भी घोषणा की।
2: मेट्रो के लिए इसकी न्यू ट्रेन्स, नई जनरेशन की ट्रेन्स अगले 5 वर्षों में इंडक्ट करेंगे। नई जनरेशन की ट्रेन्स आने से कोलकाता के निवासियों को बहुत अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, वो भी एक बहुत बड़ा आगे स्टेप लिया जाएगा।
1: संचार और ग्रामीण विकास राज्य मंत्री पेम्मा सानी चंद्रशेखर ने आज आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नारको दुरु गांव में समृद्धि केंद्र का लोकार्पण किया। ये गांव को डिजिटल व्यवस्था में परिवर्तित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नारको दुरु एकीकृत ग्रामीण विकास मॉडल अपनाने वाला भारत का तीसरा और तेलुगु भाषी राज्यों का पहला गांव बन गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में 4th लेवेंडर महोत्सव का शुभारंभ किया। महोत्सव की थीम है लेवेंडर गोज ग्लोबल। 2 दिन के इस महोत्सव में बैगनी क्रांति की उपलब्धियों और क्षेत्र में बढ़ते लेवेंडर उद्योग को प्रदर्शित किया गया है। इससे लेवेंडर की खेती और उद्यमिता की बढ़ती सफलता का पता चलता है। राज्य के किसानों और युवा उद्यमियों के लिए लेवेंडर की खेती ने आजीविका के नए अवसर सृजित किए हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने आज नामांकन पत्र भोपाल में भरा। कांग्रेस ने पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन को उम्मीदवार बनाया है। उधर आंध्र प्रदेश में जन सेना पार्टी के लिंग मनेनी रमेश ने अमरावती में नामांकन दाखिल किया। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन

0: झारखंड के दो दिन के दौरे पर आज रांची पहुंचे। उन्होंने कहा कि झारखंड उनकी जन्मस्थली और दूसरा घर है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी और पार्टी के अन्य पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं ने श्री नवीन की यात्रा को संगठन के लिए महत्वपूर्ण बताया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
0: ये आकाशवाणी है। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के मिसाइल हमलों से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
2: खाड़ी देशों और अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम ने ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नाकाम कर दिया। इससे जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास ईरानी ड्रोन की गतिविधियों की खबरों के बाद अमेरिकी सेना ने केशम द्वीप और गोरुक में ईरान के राडार और निगरानी ठिकानों को निशाना बनाया था, जिसके कुछ ही घंटों बाद ईरान ने ये हमले किए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि लगातार जारी अभियानों से ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कम हो गई है। हालांकि ईरान ने इस दावे को खारिज कर दिया है। संघर्ष विराम पर बातचीत रुकी हुई है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। दुबई से विनोद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: भारत ने कहा है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अपनी अस्थायी सदस्यता का दुरुपयोग जम्मू कश्मीर के बारे में झूठे दावे फैलाने के लिए कर रहा है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने चेतावनी दी कि पाकिस्तान को अपनी जिम्मेदारियों का ध्यान रखना चाहिए।
3: I'd like to remind Pakistan that being a member of the...
4: मैं पाकिस्तान को याद दिलाना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। ये पक्षपाती और झूठी बातें फैलाने का मंच नहीं है। मैं ये बात साफ साफ कहना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान की खोखली बयानबाजी और झूठे दावों से ये बुनियादी सच्चाई नहीं बदलेगी।
0: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि मादक पदार्थ मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान एक सशक्त जन आंदोलन के रूप में उभरा है। किश्तवाड़ में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 19 जिलों में 56 दिनों से जारी इस अभियान ने बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित किया है। उपराज्यपाल ने कहा कि प्रशासन मादक पदार्थों के कारोबार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के फिरोजपुर जिले में हुई दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। आज सुबह फिरोजपुर फाजिलका सड़क पर एक ट्रक से वाहन की टक्कर में 9 लोगों की मौत हो गई और 22 लोग घायल हो गए। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज का 353वां राज्याभिषेक समारोह आज पूरे उत्साह के साथ मनाया गया। मुख्य कार्यक्रम रायगढ़ जिले के महाड तालुका में स्थित रायगढ़ किले में आयोजित किया गया। 6 जून 1674 को शिवाजी का ऐतिहासिक राज्याभिषेक हुआ था। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने अंक सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जून कर दी है। सीबीएसई ने बताया कि विद्यार्थी अब कल मध्यरात्रि तक अपनी आवेदन जमा कर सकेंगे। इससे पहले आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि आज तक ही निर्धारित थी। मौसम विभाग ने कल तटीय कर्नाटक, केरलम और माही में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर राज्यों के अधिकांश हिस्सों, आंतरिक कर्नाटक, गोवा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। इस बीच दक्षिण पश्चिम मानसून आज महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर में आगे बढ़ गया है। जापान में भारतीय अंडर 18 पुरुष टीम ने एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में भारत ने जापान को 4-1 से हराया। आशीष तानीपुटी ने 3 और कप्तान केतन कुशवाहा ने 1 गोल किया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि टीम ने पूरे टूर्नामेंट में असाधारण कौशल और टीम वर्क का प्रदर्शन किया। उन्होंने अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने पर भारतीय महिला हॉकी टीम को भी बधाई दी है। गोवा में भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है।

फाइनल में भारत ने बांग्लादेश को 3-0 से हराया। भारत ने छठी बार ये खिताब अपने नाम किया है। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में रोहन ताइडे ने सब जूनियर आर्टिस्टिक सिंगल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। भारत अब तक 6 स्वर्ण पदक सहित कुल 7 पदक जीत चुका है। पदक तालिका में भारत शीर्ष पर बरकरार है। न्यू चंडीगढ़ में भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल समाप्त होने तक भारत ने 3 विकेट पर 368 रन बना लिए हैं। कप्तान शुभमन गिल 103 और ऋषभ पंत 50 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। केएल राहुल ने 100 रन और साई सुदर्शन ने 81 रन की पारी खेली। ये टेस्ट मैच विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा नहीं है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की। देश के आर्थिक परिवर्तन और दीर्घकालिक विकास प्राथमिकताओं की समीक्षा की। केंद्र ने खाद्य तेलों के लिए मानक पैकिंग साइज लागू किया। इसका उद्देश्य पारदर्शिता बढ़ाना और एक समान पैकेजिंग को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने नई दिल्ली में नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल से बातचीत की। कहा दोनों देश खुली सीमा पर सुरक्षा बनाए रखने के लिए निकट सहयोग कर रहे हैं। कुवैत और बहरीन में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमले से पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ा। जापान में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने जापान को हराकर अंडर 18 एशिया कप जीता। भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक हासिल किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।